0: अरे थारे नाले में जाके तू मुंह धो के आका नारे गारे गारे गारे गारे
1: सूर बदल
0: गारे गारे
1: गारे
0: गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन आया है तो
0: चतुर नार अब पकड़ कर रखेगा जे।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो प्योर रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑन

आओ हाँ रल के सोचिए भी ट्रंप है ते मूर्ख या नवे गल्लां एक दिन च ओ स्टूपिड करदा है ते एक ते उन्हें ठीक ते नहीं किया कि भारत नरक है इहदे ते विचार करना है। हां जी असीं कोई ठप्पा नहीं लाउण डए पर विचार जरूर करना। अगले आवर विच भाई जिन्हां दी ड्यूटी सी ओ किसे कारण हाजिर नहीं हो सके ते साडे सूबा सिंह जी खैरा जी उहनूं मैं कॉल कीती है ओ टाइम कढ के ते साडे नाल गल्लबात करनगे किसे भी विषय दे उत्ते। सो दोस्तो एग्जैक्टली इट्स योर लवली रेडियो स्टेशन टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.parvazradio.com। बिल्कुल जी आप ऐप डाउनलोड करो नहीं तुसा ते करवाई है अपने सज्जना मित्रां नूं भी करवाओ भाई। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। parvazradio.com अपने प्ले स्टोर ते जाके परवाज रेडियो PARWAZ रेडियो RADIO इस वन वर्ड तुसी डाउनलोड करोगे तो लोगो है साडा जी येलो रंग दा दो स्पीकर आप सुनो ते अपने यारां दोस्तां सजना मित्रां नूं सुनाओ। दोस्तों जे तुसी भी अपने विचार रखने चाहुंदे हो मेरे इस सैटरडे वाले प्रोग्राम दे विच ते यू मोस्ट वेलकम मेनू कॉल करो ते दसो तुसी केड़े टॉपिक ते केड़े विषय ते गलबात करनी चाहुंदे हो। बिल्कुल जी असीं तुहानूं वेलकम करांगे लेकिन पक्षपाती लोकां दा रेडियो दे विच जां रेडियो दे इस प्लेटफार्म ते कोई जगह नहीं जिहड़े न्यूट्रल लोग गलबात करदे होण ओ मोस्ट वेलकम। ते मैं हां जी आपदा दोस्त ते होस्ट सुच्चा सिंह बाजवा। स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट। तस्वी फेर दे बुढ़े हो गए भाई मुल्ला पंडित सारे तस्वी टुटी मसला पाटा फाके कट कट हारे ना आप सुख पाया ना समाज वास्ते कुछ कीता इन्हां लोकां ने। तस्वी टुटी मसला पाटा फाके कट कट हारे सजदे कर कर मथे रगड़े कुबे होए विचारे ओए इलम दीना नू अल्फ ना लभी अखर फोले सारे जो लब्बा ना ओदा सरनावा दसन जग जितया खुद तो हारे सुचा सया रब अंदर वसे ए उपर करन यारे। कदी ए सतवें समान दी गलबात करदे ने ते कदी दसवें पताल दी गलबात करदे ने। हां जी एनी हाउ मैं इन्हां वल उंगल ही करनी सी अगों तुसी सोचना भी ए की चीजां ने। सो दोस्तो अज सैटरडे है जी बहुत सोहना दिन वंडरफुल डे सोहने दिन आ गए जे यूरोप च भी गर्मियां शुरू हो गई जी। हां जी ते अज 2 मई है जी ते टेम्परेचर वंडरफुल 24 ग्राड। हां जी सोहना टेम्परेचर है अज ए लोग खुश ओपन कारा च मतलब कि पैंटा नू ते छड्डो निकरां च ते बनैणा दे विच मुंडे कुड़ियां सब तुरे फिरन डए ने है कुत्ते बाजियां मारन डए ने। इधर दे कुत्ते ते बच्चे इन्हां नू बाहर कड्डो ते लुडियां पाउंदे ने बेचारे 9 महीने दे अंदर रहिंदे ने ते लुडियां पैणियां ही ने। टाइम दोस्तो साडे स्टूडियो दी सोहणी जिही घड़ी ते ऐस वक्त जर्मन दे दोपहर दे जी 3:00 ने 1-2 3:23 हो गए ने जी
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ 0049-171-4869-514 0049-171-4869-514 ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਲਹੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਟੋ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਾਸ 106 ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਅਜਮਾਓ, ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਜਬ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਾਸੇ 106 ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6th Rue 6th ਮਿਊਲਹੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਦ ਬੜੇਗਾ ਸੰਜੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਗਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਗਾਣੇ ਦਾ।

दूजे करी चले डाकी रख दे नजर बई अपने करां दी इन्नी हुंदी नहीं खबर बई दूजे करी चले डाकी

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। क्या क्या

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हाल बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पागलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप विच ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

सो दोस्तों, मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोकां ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी टेकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा, जदों मंगलयान जदों भारतीय विज्ञानियां ने बनाया ते आपे बना के बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के उदी पूजा करन लै पे, हद हो गई। इहदे च की तुसीं जिहड़ी मशीनरी बनाई है कोई देवता बनाता है, तुहानूं कोई रब बनाता जिहदी पूजा करन रहे हो, हाथीं तां तुसीं इह सारा कुछ बनाया है। भावें टकनीक किसी होर कंट्री दी सी, कोई गल नहीं, पर तुसीं चलो बनाया है ते इहदे च पूजण वाली इहदे नक्क घसाउण वाली किहड़ी गल है। रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले नींबू रखे, नारियल तोड़े, हांजी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। ओए जिहड़े इंजीनियरां ने इह जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे, कि तुहानूं कुछ होर भी याद है, चेते आउंदा कोई कोई पूजण तों सवा, चूहियां तक पूजण तों सवा, हर उह चीज जिहदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाणा, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त अगले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, ए अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। वो जहाजां दी पूजा कीती गई जी, नींबू नींबू धर के, ए जहाज की गल है, तुहाडे पूजा करन नाल पेट्रोल घट खाणगे या तुसीं इहदे ते कोई फायर करोगे तो बंदे ज्यादा मारनगे, जां इन्हां नूं कोई गोली टच नहीं करेगी दुश्मन दी, की किहड़े पॉइंट ऑफ व्यू दे उत्तों तुसीं मतलब कि उन्हां दी इह पूजा कर रहे हैगे सी। मैं अपनी धार्मिक मैंटैलिटी की गल कर रहा भारतीयां दी, जहाजां दे नहीं कोई इतराज, मैं सोच की गल कर रहा भाई, असी सोचते किदां वा प्यारे भारतीयो, पिछले 2000 साल तो

0: और क्या कीजिए हम सब दिन हम सब दिन हम सब दिन
1: जी दोस्तों गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है जिवें कि श्री राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है गौरी राग दे विच पांच शब्द आसा राग दे विच छे शब्द गुजरी राग दे विच एक शब्द सोरठ राग दे विच सत शब्द तनासरी राग दे विच तीन शब्द जैतसरी राग दे विच एक शब्द सूही राग दे विच तीन शब्द बिलावल राग दे विच दो शब्द गौंड राग दे विच दो शब्द रामकली राग दे विच एक शब्द मारू राग दे विच दो शब्द केदारा राग दे विच एक शब्द भैरव राग दे विच एक शब्द बसंत राग दे विच एक शब्द ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेडे है वह है तोही मोही मोही तो ही अंतर कैसा तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाम बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं मेरी संगत पोच पोच दिन राती मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है संत तुझी तन रंगत प्राण संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है तुम चंदन हम इरंद बापुरे तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तों साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन जो कि इकताली दे इकताली शब्द उन्होंने गाए हन उन्होंने याद किते हन ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी जी सुनो जी

माटी को उतरा कैसे नचत है, माटी को उतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है।

0: आई हो पुत्रा कैसी नचत है, आई हो पुत्रा कैसी नचत है, आई हो पुत्रा कैसी नचत है। जय गुरु जी।
1: हां जी, गुरु रविदास जी दा समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेदभाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता दा संदेश दित्ता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशा ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिखियावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो, नमस्ते सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असी आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
0: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिनी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रवे और बाणी सुनदे रहन, बच्चियां नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चियां नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बद के मैनू कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन साडा गाना बजाना पर, इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनू दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रवास रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जिहड़े श्रोता सुन रहे ने, आप सब नूं बड़े अदब बड़ी आदती नाल सति अकाल, और इसे तरह तुसी प्रवास रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असी जुड़ांगे जी।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

वार यू आर, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ उह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजणो, मैं ना तुहानूं अपनी एक रचना सुणाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजणो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वह क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर घर रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा है, वह क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी,
ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ? ਹਰ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ?

वारिया, बहुत खूबसूरत गाना, वंडरफुल डांस। ते हीरोइन का नाम पता नहीं की, पता नहीं लगा, लेकिन वंडरफुल डांस सी जी, खूबसूरत गाना। ते मिसेस कपूर जी, उम्मीद है तुसी भी खुश हो गए होगे, साडियां गुड विशेस।

काम पूरा नहीं हो रहा है, ये कमी पेशी वाला है, ये शरीर नॉर्मल नहीं है, दूसरे लफ्जों में कहें कि बीमार है, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट उस सेल में कुछ ना कुछ ऐसी कमी पेशी आ गई है। और सेल का मतलब ये है कि सेल के किसी उस डिपार्टमेंट में, किसी उस अंग में, किसी उस ऑर्गेनल, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस ऑर्गेनल में इस तरह की कोई कमी पेशी आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो काम पूरा नहीं चल रहा है। और इस लिहाज से हमने इस सेल की शिनाख्त करनी शुरू की, और सेल की जब हमने शिनाख्त शुरू की तो फिर हमने ये देखा कि भाई सेल के अंदर जाने के लिए बाहरी एक दीवार है, और बाहरी जो एक दीवार हम देख रहे थे उस दीवार के बारे में, जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बताया था, वो जो सेल मेम्ब्रेन था उसकी बात मैंने आपसे की थी कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैंने जो दूसरे अंग्रेजी और पंजाबी के प्रोग्रामों में दी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें हमने ये कहा था कि ये दो तहों का बना हुआ होता है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बीच में कुछ जगह होती है, और उस जगह में थोड़ा फ्लूइड भरा रहता है, कुछ तरल रहता है, ताकि सेल को काम करते करते कुछ फैलना पड़े, सेल को कुछ बाहर निकालने के लिए सुकड़ना पड़े, अगर सुकड़ेगा तभी ना उससे कुछ बाहर निकलेगा, और फैलेगा तभी ना उसमें कुछ अंदर आएगा, या ऐसे कहें कि अंदर आएगा तो उसको फैलना पड़ेगा, अगर उसको कुछ बाहर निकालना है तो उसको सुकड़ना पड़ेगा। तो ये जो काम उसमें चलेगा, उस काम की वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो आपस में टकरा ना जाएं, उससे रगड़ पैदा ना हो, उससे कोई और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुदरत ने उसमें एक फ्लूइड रखा हुआ है जिसको हम लोग सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और इस फ्लूइड और इस मेम्ब्रेन के बारे में हमने आप सब लोगों को बता दिया कि ये आमतौर पर प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है, और प्रोटीन और लिपिड की डिफरेंट कंसिस्टेंसी है, अलग तरह का घोल है जो मेम्ब्रेन बनाता है, और अलग तरह का घोल है जो इसके बीच रहने वाला जो लिक्विड है वो बनाता है। तो इस तरह ये पूरे का पूरा मेम्ब्रेन एक दीवार की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस दीवार की डिफरेंसेस, इस दीवार का दूसरी दीवारों से फर्क क्या है? दूसरी दीवारों में तो किले की दीवार होती है तो उसमें दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे से ही हम अंदर जा पाते हैं, दरवाजे से ही बाहर आ पाते हैं, लेकिन ये इस तरह का किला है जिस तरह आप अंडा देखते हो ना, तो अंडे को आप देखो तो चार्ज करिए, जो उसका अंदर का घोल है वो बाहर तो आ ही नहीं रहा है, और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दीवार पूरी बंद है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अंदर से बाहर कुछ जाता है तभी अंडा बड़ा होता है, बाहर से कुछ अंदर जाता है तभी अंडा बड़ा होता है। तो ये सब चीजें इस तरह होती हैं, आम अंडे में भी जब मुर्गी के अंदर अंडा रहता है तो भी, या हमारे शरीर के सेल में भी ये जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज को, उसको हम परमीएबिलिटी बोलते थे। और परमीएबिलिटी के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये प्रेशर से काम करती है, प्रेशर से जो उसकी दीवार बन चुकी है, वैसे तो वो सुकड़ी होती है, उसमें से कुछ ऐसा नहीं निकलता। मान लीजिए एक टायर में कोई किल लग जाता है ना, किसी गाड़ी के टायर में एक किल लग जाता है, और किल जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वहां से बाहर निकलेगी हवा, और अगर वो किल बाहर निकाल दिया जाए तो एक लिमिट पर आकर वो प्रेशर रुक जाएगा, कि थोड़ी हवा निकली उसके बाद वो हवा जो टायर में है वो उतनी रुक जाएगी, क्योंकि तब तक इतना प्रेशर अंदर नहीं रहा कि वो उस सुराख को जहां पर कील लगा हुआ था उसको डायलेट करके तो हवा बाहर निकल सके। तो इसी तरह की इस चीज को भी हम परमीएबिलिटी बोलते हैं। दूसरी बात मैंने इसमें एग्जांपल दी थी कि हम छाछ छानते हैं ना, दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई छाछ जो होती निकलती है, उसको छानते हैं तो जैसे ही हम ज्यादा प्रेशर देते हैं उससे और लिक्विड निकलता है। पहले तो हम कपड़े से छानते थे ना, आजकल तो अलग अलग तरीकाकार आ गए हैं, लेकिन उस वक्त हम कपड़े से इसको छानते थे, तो कपड़े को जैसा ही आप प्रेशर देते थे उसी तरह ही इसमें वो प्रेशर के साथ
वो जो धागे हैं कपड़े के उस वैसे तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप उसको प्रेशर डालोगे तो धागों के अंदर जो जगह बनेगी उससे लिक्विड बाहर निकलेगा। यही प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर घटित होता है, और इस सेल के अंदर घटित होने वाले प्रोसेस का नाम है हमारा के परमीएबिलिटी। इस परमीएबिलिटी की वजह से ही सेल बढ़ता है, सेल कम होता है, छोटा होता है। ये ऐसे कहें कि हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग जब खुराक खाते हैं तो खुराक हमारी हजम होकर आंतड़ियों से खून में शामिल होती है। उसका प्रोसेस मैंने आप सब लोगों को बताया है कि कैसे हम खुराक खाते हैं और उसमें से कैसे वो आंतड़ियों से हजम होकर और फिर खून में कैसे मिलती है। वैसे ये पूरा एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था जो मैंने कई बार इसमें लेक्चर किए, आगे आने वाले समय में फिर दोबारा ये हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लें क्योंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रेशर से खून में रच गया। जितना जितना भी एक्सट्रैक्ट उसका निकला हमारी खुराक का, हमने क्या खाया कैसे खाया, उसमें जितना भी एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें खून में मिलने के लिए, चाहिए इस शरीर को और बड़ा तमीर करने के लिए, या इसकी जो टूटन हो रही है, टूटबाजी हो रही है उसको रिकवर करने के लिए जो चीज हमें चाहिए, वो तत्व इस खुराक से निचड़ कर खून में शामिल होता है। और जब ये खून में शामिल होता है तो फिर ये अलग अलग जगहों पर खून के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, हमारे जो आर्टरीज हैं इसमें प्रेशर बढ़ता है, इसमें टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से सेलों के अंदर ये खुराक पहुंच जाती है। सेल के अंदर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर खुराक खाने के बाद बढ़ जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही एक से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तीसरे से आगे गए, ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी में, और ट्रिलियन सेल में ही ये क्रिया उसी वक्त होनी शुरू हो जाती है, इन ए मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और जब उसके बाद सेल जो हैं इसमें से आई हुई खुराक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो बाकी वेस्ट बच जाता है पूरे का पूरा, हालांकि वेस्ट तो आंतड़ियों ने भी निकाल दिया था और अब जो उसने बिल्कुल प्योरीफाइड खुराक थी वो ही निकाली थी, लेकिन जैसे हम लोग दही से मक्खन बनाते हैं तो फिर मक्खन को और प्योरीफाई करते हैं, हीट पर रखकर वो घी बन जाता है। ठीक इसी तरह ही हमने खुराक से बिल्कुल प्योरीफाइड वो मक्खन की तरह निकाला और खून में मिला दिया, और खून के बाद फिर वो सेलों में गया, सेलों में प्योरी उसकी और प्योरिटी जो शामिल हुई उसमें फिर वेस्ट बचता ही है। वो जो वेस्ट बचता है जैसे हमारे मक्खन के ऊपर जो छाछ थोड़ी और आ जाती है उसको निकालते हैं, इसी तरह वो सेल जो है निकालता है। सेल कैसे निकालता है, एक तो खुराक आ रही है, दूसरा उसका गार्बेज बच गया है, अंदर का प्रेशर जो बढ़ जाता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली अंदर से चीजें बाहर जानी शुरू हो जाती, तो इसी तरह वो जाने वाला खून, वापसी खून जिसको हम वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं, वेनस सर्कुलेशन में ये वापसी वाला गार्बेज जाना शुरू हो जाता है, फिर वो जगह जगह पहुंचता है। इसी तरह ही जो सही गार्बेज निकलना है, पहले तो मल त्याग से निकल गया या पेशाब से निकल गया, अब जो ऐसे आया है इस तरह का गार्बेज ज्यादातर जो है वो पसीने से या सांस से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का गार्बेज निकलने का ये तरीका कार था। ये बात हमने मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी, और मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये बताया था कि मान लिया जाए ये दीवार खराब हो जाए, इस दीवार में सुराख हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि बाहर से हर एक चीज जबरदस्ती अंदर चली जाएगी। या ऐसे कहें कि कोई ऐसी चीज हमने खा ली जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया, टॉक्सिन हो गया, जहरीला मादा हो गया। जब दवाई खाने के बाद आप महसूस करते हो ना कि लगता है मुझे दवाई फिट नहीं बैठी, एलर्जी सी हो गई है, घबराहट सी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि उस दवाई में जो चीज आपके शरीर में अंदर जा रही है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसकी वजह से वो खून में शामिल हुई, खून से सेलों में शामिल हुई, सेल उसको निकालना चाहता है, निग्लेक्ट करता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तभी हम लोग घबराहट महसूस करते हैं। और इसी की वजह से अगर
वो प्रेशर से अंदर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ और सुराख कर दिया उसने, सुराख को ज्यादा कर दिया उसने, जिसकी वजह से ये अंदर जाना शुरू हुआ, फिर वो उसको निकालने की कोशिश करती, मान लिया जाए। अब अंदर चले ही गई है, कोई भी चीज जो शरीर को ठीक नहीं लगती वो शरीर के अंदर चले गई है, मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मेम्ब्रेन जब डैमेज हो गया तो उसकी वजह से आम तौर पे सबसे पहले जो शरीर से नुकसान होता है, जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए दूसरे देश पर कोई किसी देश का हमला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको, या उसके चारों ओर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको डैमेज किया जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारे सेल है, सेलों में भी जैसे WBC है, इसके साथ WBC को खुराक कौन पहुंचाता है, WBC को एक्टिव कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, RBC में होती है, खून के जो लाल कण होते हैं ना ये उसी में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अटैक कहाँ हुआ, कि जैसे भी मिलिट्री में लड़ाई भी होती है ना तो दूसरी दुश्मन फौज उसकी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश करती है, और सप्लाई लाइन काटने का मतलब है उसको डैमेज कर दो। तो सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन खराब हो गया या कोई चीज जबरदस्ती या जहरीली किसी भी तरह की चीज जो खा ली है वो सेलों में दाखिल हो रही है, तो उस लिहाज से अंदर का निजाम इस तरह बदलेगा। और उसको वापसी में वो निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका निकलेगा पसीने की वजह से, तेज तेज सांस लेंगे, ये सब क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो एक कंडीशन बन जाती है ना, मेम्ब्रेन खराब होने की जो कंडीशन एक पेशेंट की बन जाती है उसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। और हेमोलाइटिक एनीमिया जो है ये साबित करता है कि हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूट गया है और अब ऑक्सीजन शरीर की पूरी नहीं हो रही है, और इसी की वजह से हमें सांस फूल रहा है, इसी की वजह से हमें घबराहट हो रही है। इसको निकालने के लिए जो सेल है कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पसीना आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं त्रेली आ रही है, मैंने कोई जहरीली चीज खा ली या दवाई खा ली या फिट नहीं बैठी तो त्रेली आनी शुरू होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये गलत चीज मेरे में आ गई है। और उसके बाद अगर कोई चीज टेम्परेरी तौर पे हमारे शरीर में दाखिल हुई तो उसको हमने बाद में बंद कर दिया तो फिर वो सारा कुछ रिपेयर होना शुरू हो जाता है, नए सेल आने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल हैं वो हमारी बड़ी बड़ी जो लंबी बोन है उनमें से बनते हैं और वो हड्डियां फिर उसको बनाना शुरू कर देती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कोई जहरीला मादा या कोई बहुत ज्यादा नशा या कोई ऐसा कर लें तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में बंदा डोलने शुरू कर देता है, डिगना शुरू कर देता है, गिरता है। तो ये सब चीजें आमतौर पर इस बात की सूचक है कि अब बोन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है नए सेल बनाने के लिए, क्योंकि बाहर के जो सेल सर्कुलेशन में चल रहे हैं वो डेड हो रहे हैं। तो बाहरी चीज आ गई है सेलों में, उसकी वजह से वो सेल ज्यादा वहां मर रहे हैं, ज्यादा डेड हो रहे हैं जरूर से ज्यादा, और बोन्स को सेल बनाने के लिए और मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए हमारी टांगे लड़खड़ाना शुरू कर देती, जहर वाली कोई चीज अंदर चली जाए या जो चीज हमें बर्दाश्त नहीं वो चली जाए तो हमारी टांगे जो है लड़खड़ाना शुरू कर देती। उसका मतलब भी यही है कि बोन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब इस तरह के हालात में अगर हम बाहरी शरीर से देखें, उसका तो मेडिकल नाम तो मैंने आपको बोल दिया कि इसको हम बोलेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। तो भाई खून के लाल कण टूट रहे हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पर वो जहर तो अंदर है ना, जहर की और क्या निशानियां होगी, बहुत बहुत सारा और नुकसान वो करेगा। दुश्मन अगर हमारे घर में आ गया या देश में आ गया और अंदर दाखिल हो गया तो बहुत से और भी नुकसान कर सकता है, और सी चीजों को भी नुकसान करेगा। तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन हमारे सामने से दिखाई देगा वो क्या होगा कि हमारी चमड़ी जो है पीली हो जाएगी,
क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे शरीर में जो ग्लो है ना हेमोग्लोबिन की, इसीलिए है कि उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन है। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है, जब कोयले को आप फूंक नहीं मारोगे तो लाल नहीं होगा, अदरवाइज उसके ऊपर जो उसकी खाक है ना वो जमनी शुरू हो जाएगी और बेशक उसके अंदर आग रहे लेकिन बाहर से वो लगेगा, उसमें राख उसके ऊपर आनी शुरू होगी। फूंक मारोगे तो वो कोयला फिर जलना शुरू हो जाएगा। और अगर फूंक मारने वाली बात ही नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन ही कम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसी तरह राख बनना शुरू, बाहर से राख ही दिखाई देगा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी चमड़ी जो है वो पीली हो जाती है, हमारी चमड़ी पीली हो जाती है, हमारे नाव नाखून ये पीले होने शुरू हो जाते हैं, आंख का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, नेल आंखें ये सब पीली हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पेशाब भी पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। और ये जितनी बातें मैंने कही हैं इनका सीधा सा बात है, एक ही लफ्ज में हम कहें तो फिर कहेंगे जंडिस पीलिया, के भाई उस बंदे को पीलिया हो गया। अगर तो एक आध बार की बात है तो ठीक हो गया, उसके बाद दवाई हमने वो छोड़ दी या वो जहरीली चीज खानी छोड़ दी तो उसके बाद वो ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रोजाना में इस तरह की कोई चीज खा रहा है तो उस लिहाज में आस्ते आस्ते ये चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, लिवर काम करना बंद कर, जैसे शराबी लोगों को बोलते ना कि भाई तेरा तो लिवर खराब हो गया डैमेज, उसका मतलब यही है कि जो नशा जो दवाई चीज आप अंदर दे रहे हो वो इतनी ज्यादा नुकसानदेह हो गई है कि उसने बहुत सारा हेमोग्लोबिन आपका तोड़ दिया, सेल आपके तोड़ दिए, जिसकी वजह से ये पीलिया होना शुरू हो गया। और उसकी तस्वीर भी मैंने आपको बताई थी कि लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से जितना भी आयरन होता है वो आयरन वहां तोड़ देता है। उसका काम ये है, कबाड़िए की तो कहे कि जो चीज उसके पास आई उसको पीस पीस कर देगा, तोड़ देगा, और उसमें से जो जरूरी चीज है वो खरीद लेगा, इसी से उसकी दुकानदारी चलती है। और जो उसके पास ज्यादा बच जाएगा वो ज्यादा भेज देगा खून में, अगर कोई कम है तो उसको कम भेजना पड़ेगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि आयरन तो बहुत टूट गया, हीमोग्लोबिन तो बहुत टूट गया, इसका मतलब जितना ज्यादा आयरन टूटेगा उतना ज्यादा ही उसमें बिलीरुबिन बिलीवर्डन बनेगा, इनको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। ये बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट इतने ज्यादा बन जाएंगे और इतने ज्यादा हो जाएंगे लिवर में तो क्या करेगा, वो ज्यादा खून में भेज देगा, ज्यादा खून में भेजेगा तो हमारा रंग पीला, आंखें पीली, पेशाब पीला, होंठ पीले, नाखून पीले, ये सब होना शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो फिर एनर्जी का लेवल भी हमारा लो हो जाएगा और फिर थकावट, जल्दी थकावट, फटीग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, थकावट होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा काम करो या सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, घबराहट होती है, थकावट हो जाती है, वैसे भी चलने में जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो पहले काम आप कर सकते हैं अब वो नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि अंदर मेम्ब्रेन की दीवार टूट गई। बाहर जा ऐसे कहें कि बाहर का प्रेशर किसी चीज से इस तरह बढ़ गया कि बाहरी चीजें जो नहीं चाहिए थी सेल को वो भी सेल के अंदर पहुंच गई, क्योंकि हर चीज जो अनवांटेड है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो अगर सेल के अंदर जाए, इधर आलू ही ज्यादा खा लें, पोटैटो ज्यादा खा लें, आप परोठे ज्यादा खा लें तो फिर आप लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर देते, क्यों लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। हर एक चीज चाहे वो जरूरी है, खुराक का अंग है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज अंदर चली जाती है तो वो इस तरह का हालात पैदा करती है। गन्ने ज्यादा चूप ले, ये ज्यादा रसगुल्ले ज्यादा मीठे खा लिए तो फिर भी उनको ऐसे थकावट, घबराहट, वीकनेस आनी शुरू हो जाती, क्यों, क्योंकि शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा बाहर चलेगी, हेमोग्लोबिन ज्यादा टूट गया, उसकी वजह से ये होगा। हालांकि शुगर बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए या सेल बनाने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए शुगर बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ओवरलोडिंग कर दिया। जब आप ओवरलोडिंग कर देंगे तो आपने एक बात मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बताऊं कि अगर आप किसी पार्टी पर चले जाओ ना तो जितना हम घर में खाते हैं उतना नहीं खाते, उसे कई कई गुना ज्यादा खा जाते, ये भी खा लो, वो भी खा लो, इतने रसगुल्ले खा लो, इतनी मिठाई ये खा लो सब। और दूसरे दिन पार्टी से रात आए थे, दूसरे दिन काम पर जाने को मन नहीं करता,
मजबूरी हो तो लोग जाते जरूर हैं, लेकिन ये बोलते यार मन नहीं करता, बड़ी थकावट सी है, पता नहीं पार्टी में गए थे ऐसे हो गया इसलिए हो गया। एक्सरसाइज तो फ्रेश करती है ना, अगर नाचे हैं कुछ ऐसा किए हैं तो फ्रेश होना चाहिए ना, लेकिन फ्रेश नहीं है। क्यों नहीं है कि जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में चली गई है और उसने आपकी ऑक्सीजन का जो काम था वो कम कर दिया है सेल में, जिसकी वजह से थकावट होती है, रुकावट होती है, तो ये फटीक वगैरह होनी जो आम तौर पे शुरू हो जाती है। अब ये काम मेम्ब्रेन का, हम सिर्फ मेम्ब्रेन के डैमेज की बात कर रहे हैं हिंदी में, मेम्ब्रेन का डैमेज होना अगर तो टेम्परेरी है तो थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, थोड़े दिनों में सेट हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लगातार शरीर में जा रही है तो उस लिहाज में आम तौर पे क्या होगा, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या ऐसा कहें कि तिली बढ़नी शुरू हो जाती है, कोई भी चीज अनवांटेड चली जाए शरीर के अंदर जिससे आपका हेमोग्लोबिन ज्यादा टूटना शुरू हो जाए, तो उस लिहाज से ऐसा होगा कि भाई सेल ज्यादा टूट गए हैं, जिसकी वजह से सेल की रिपेयर की, क्योंकि ऐसे मैं बोल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जितने भी सेल बोन बनाती है ना, लंबी लंबी बोन जितनी भी है, ये हमारे सेल बनाती है ना, तो ये खून में छोड़ देती, ये सब खून में छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, सर्कुलेट करते करते करते करते तिली के पास पहुंचते, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में पहुंचते हैं। स्प्लीन एक इनका इस तरह का डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है, जिस तरह रिक्रूट को भर्ती किया गया, उसको पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उसको देखा गया कि अब इसको बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता, और जो पूरे ट्रेंड होते हैं वो पास कर जाते हैं रिक्रूटिंग ट्रेनिंग और फिर उसको वापस भेज जाए। वो पास कौन करेगा, वो स्प्लीन है हमारी, खून के सेलों को स्क्रूटिनाइज करने के लिए या उनको ये देखने के लिए कि कितने सेल नॉर्मल हैं जिनको आगे खून में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, और अगर वो देखें कि इसमें जो सेल हैं ये काम करने लायक नहीं है, सर्कुलेट करते करते बोन ने बनाए सेल, खून में छोड़ दिए, चलते चलते सर्कुलेशन में जितने भी वो खून के जरिए स्प्लीन तिली के पास पहुंचते हैं वो उनको फिर फिल्टर करती, जो नॉर्मल सेल हैं उनको फिर सर्कुलेशन में भेज देती है, जो नॉर्मल सेल नहीं है उनको वहां रोक लेती है, उनको या तो डिस्ट्रैक्ट कर देती है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटिक फंक्शन, खा जाना, खत्म कर देना, तो उसको खत्म कर देती, नहीं भी तुम चलने लायक नहीं हो, तुम नहीं मिलिट्री में बॉर्डर में नहीं जा सकते, तुम ट्रेन नहीं हो पूरी तरह, उनको वो वहां खत्म कर देती है, और फिर जो नए सेल आने शुरू हो जाते हैं फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर देते। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरह की जहर, इस तरह की दवाई या इस तरह की कोई चीज रोजाना ही खा रहा है बंदा और उस रोजाना उसके शरीर में जा रही है, तो अल्टीमेट रोजाना ही तिली को वही काम करना पड़ रहा है, सेल तो बन रहे हैं, तिली उसको फिल्टर भी कर रही है, नए नए बढ़िया सेल जो है उनको वो भेज रही है सर्कुलेशन में, लेकिन बाकी स्टोरेज ज्यादा बच गया, बाकी अगर स्टोरेज ज्यादा बच जाएगा तो फिर तिली बढ़नी शुरू हो जाएगी। दाई तरफ पसलियों के नीचे आम तौर पे वो तिली हमें दिखाई नहीं देती, अगर दबा कर आप देखोगे ना पसलियों के नीचे तो वो तिली दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम हो, चाहे बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है जहरीली, चाहे अंदर से किसी अंग की खराबी से वो जहर बन रहा है, इसको इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। दो तरह का जहर मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी खुराक के साथ जा रहा है जो बाहर से जा रहा है उसको हम बोलते थे एग्रोटॉक्सिन, और एक ऐसा है किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी अब उसमें यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, वो जहर के तौर पर शरीर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह ही अलग अलग अंगों में अगर उनका निकास नहीं पूरा हो रहा गार्बेज का, वो खून में चला गया तो वो भी एक जहर का काम करता है, इसको हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। तो सेल से बाहर से भी कोई जहर जा सकता है, अंदर से भी कोई जहर जा सकता है, लेकिन काम उनका वही होगा कि वो सेलों को ब्रेक करेंगे, किडनी जो स्प्लीन है उसका काम बढ़ जाएगा,
उसका काम बढ़ जाएगा, पर उसकी अपनी काम करने की समर्थता है, एक लिमिट है ना कि कितना वो खून साफ कर सकती है। और उससे ज्यादा सेल टूटना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जहर खा लिया या बार बार खा लिया, अल्टीमेट उतने बोन सेल बना नहीं रही जितने सेल आगे चाहिए, और उनमें से भी डैमेज सेल है, उनमें भी पूरे ट्रेंड फौजी नहीं है, तो वो क्या करेगी, स्क्रीन के पास स्टोरेज इतना नहीं रहेगा और वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, तो वो तिली जो हमारी पसलियों के नीचे हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं हुडकिंस डिजीज। और फेगोसाइटिक फंक्शन जो उसका था कि कितना खा लेगी बेचारी, कितना हजम कर लेगी, कितना बर्न आउट कर देगी। पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, ड्रग वगैरह पकड़ते हैं, तो फिर कई बार उसको बर्न करते हैं, बंद करते हैं, माल खाने का सामान निकालकर उसको बंद करते के लिए, या कहीं और मार्केट में ना जाए, या कहीं ऐसा ना हो। सो उसलिए ये ट्री का काम है, तो उसके पास जितना गार्बेज बच गया, एक्स्ट्रा गार्बेज हो गया, अब उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो फिर वो उसको कितना बर्न करेगी, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर ट्री बढ़ जाती, वो गार्बेज बढ़ गया तो ट्री। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी का सेल का मेम्ब्रेन किसी कोई जहरीली मादा अंदर जाने की वजह से, या इवन खुराक का ही ऐसा हो गया, जो खुराक नहीं चाहिए वो आप खा रहे हैं उसकी वजह से हो गया, या अंदर कोई किसी को किसी अंग का कैंसर हो गया, या किसी अंग की खराबी होगी, अंदर से ही टॉक्सिन बन रहा है और वो सेलों में जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर सेल ज्यादा टूट रहे हैं, एक तो मैंने बता दिया कि पीलिया हो जाएगा, रंग पीला हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, नौ पीले होने शुरू हो जाएंगे, ये आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी, ये निशानी होगी। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इस तरह की कंडीशन आए, ये हमें बताएगी कि नुक्स कहाँ है सेल मेम्ब्रेन में, कि पीली बढ़ जाएगी, पीली बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई पुरानी बीमारी का मरीज हो ना, जस्ट फॉर कैंसर आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, किसी का कैंसर हो ना, तो जिस जगह का कैंसर हो सबसे पहले वहां के एरिया के नजदीक जितने भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड वो हैं जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, सेलों से गार्बेज इकट्ठा करते करते करते करते खून को साफ करते हैं, कि खून तो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, वापसी जाने वाला आने वाला खून फ्रेश है, वो सीधे जा रहा है, वो जीडी रोड है, उसमें कोई लाइन कोई ट्रैफिक लाइन लाइट नहीं है रुकने वाली, वो सीधा सेलों में जा रहा है। सेलों से जो वापसी आता है उसमें जगह जगह ब्रेकेज है, जैसे पुलिस कटा रहता है, उसमें जितना भी गार्बेज या जितना भी इस तरह की चीजें होती हैं जो खराब सेलों के या खराब अंग से ज्यादा गार्बेज बन के निकल रहा है, उनको जगह जगह रोकती है ट्रैफिक, इनको चेक करेंगे भाई इसके कागज पत्र पूरे हैं कि नहीं है, वो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड भी अगर बहुत ज्यादा खराबी आनी शुरू हो जाए तो कितनों को कंट्रोल करेंगे, अगर एक मोटरसाइकिल आ गया तो उसको रोक लिया, अगर ज्यादा मोटरसाइकिल आ जाएंगे तो फिर कितने के सिपाही वहां होंगे, कितने को उसको कंट्रोल करेंगे। हर लिम्फ नोड की अपनी अपनी कैपेसिटी है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लिम्फ नोड फूलने शुरू हो जाएंगे। अगर लिम्फ नोड का सीधा चैनल है वो कहां जाएगा, तिली में। अब तिली भी बेचारी ऐसी है कि बेकाबू हो गई है, तो इस लिहाज से हम लोग चेक करते हैं कि कहां कहां लिम्फ नोड बढ़ गए हैं, ये साबित करता है कि किधर से बीमारी आ रही है, किधर से ये लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेट स्प्लीन तिली तक पहुंच गए हैं, अब हमारी तिली भी बढ़ गई। वो जो तिली का बढ़ जाना है वो इस बात का सूचक है कि आपके सेल का मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं रहा। उसके बाद अब मान लिया जाए जो चीज हमें नहीं चाहिए वो अगर शरीर में दाखिल हो गई, सेलों में दाखिल होगी, मैं इसकी और एग्जांपल आपको दूं, दूध है ना, दूध में बिगड़े चाटा दूध का कांजी की कुख है, कांजी की एक बूंद अगर डाल दो दूध में तो वो पूरे का पूरा दूध खराब कर देते, क्या बन जाता, पनीर बन जाता। जैसे हम पनीर बनाते हैं ऐसे घर में उसमें नींबू डाल देते हैं या कुछ और चीजें डाल देते हैं जिससे दूध फूट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उसमें जो थिक मटेरियल है वो अलग हो जाता है। और अगर किसी सेल में इस तरह की कोई चीज चले गई तो वो क्या करेगी, अंदर का जो मटीरियल था उस सारे मटीरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूध मान लें जी, दूध का चाटा है ये जो पूरा सेल है, ये एक चाटी है दूध की, पॉट है, और उसमें जितना अंदर है जो भी कुछ है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, उसको अब दूध मान लें। और अब इसमें कोई इस तरह की चीज आ गई
जिसको हम कांजी की तरह बहे, जिसको हम खट्टे की तरह नींबू की तरह बोले, तो वो क्या कहेगी? वो अंदर के दूध को फुटा देगी। अंदर का दूध फूट गया, अब क्या होगा? सेल के अंदर इस तरह की कंडीशन जब बन जाएगी तो सभी चीजें, जितनी भी उसके अंदर और काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगी कि यहां तो आग फैल गई है, अब सब सेपरेट हो जाए। तो वही काम जब इस तरह होना शुरू हो जाता है तो जितने भी सीरम हैं, जितने भी सिक्रीशन इस शरीर से बन बन कर शरीर को हजम करने के लिए निकलते हैं, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे पेट में HCL निकलता है या पेप्सिन निकलती है या बाइल निकलता है लिवर से या पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलती है, एंट्रोकनाइज आंतड़ियों से निकलती है, इनको हम एंजाइम्स, मुंह में निकलता है टाइलन। तो जितने भी ये एंजाइम निकलते हैं ना, ये पूरे के पूरे इस तरह हो जाते हैं जैसे दूध फूट गया हो। दूध फूट गया है क्योंकि सेलों के अंदर इस तरह की कोई चीज चली गई कि वो अंदर का निजाम, अंदर का जो दूध नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये फूटना शुरू हो जाएगा तो फिर अलग अलग थक्का बन गया ना, अलग अलग वो जमना शुरू हो गया ना, जिसको हम पनीर बोलते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं रहा, नॉर्मल दूध तो नहीं रहा। ठीक है, हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी अगर मान लिया जाए लिवर से बाइल निकल रहा है और बाइल जमा हो रहा कहां, गाल ब्लैडर में जमा हो रहा है, और उसमें आकर हुआ क्या कि वो तो फूट गया, वो तो पनीर बन गया है, तो उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो जो थक्का जम गया है वो नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठा बैठा वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तो ब्लैडर की ये एक कंसिस्टेंसी है कि हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा जैसे कोई चीज सुकड़ती है फैलती है, सुकड़ती है फैलती है, हरेक सेल ही ऐसे कर रहा है, तो गाल ब्लैडर भी ऐसे कर रहा है। तो वो जो सिंगनी चीज है उससे पूरी तरह स्क्वीज होकर निचोड़ कर पानी तो उसका ऊपर आ रहा है, सिंगना मादा जम रहा है, तो क्या बनेगा? गाल ब्लैडर के स्टोन बन जाएगा। और गाल ब्लैडर का स्टोन ही क्यों बनेगा? किडनी में भी तो वो जा रहा है, वही खून जा रहा है, इसी तरह किडनी के अंदर भी क्या होगा, स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। अकेला किडनी में ही नहीं, बॉडी के और बहुत सी जगह है, जैसे ग्लैंड जितने भी हैं, थायराइड ग्लैंड गले में, मुंह में बहुत सारे सबलिंगुअल ग्लैंड हैं या वेस्टिबुलर ग्लैंड, कितनी तरह के ग्लैंड मुंह में, जितनी जगह जगह अलग अलग ग्लैंड हैं, उनमें भी यही कंडीशन बन जाएगी कि भाई वो दूध तो फूट गया, और उसी में भी पथरी बनने की टेंडेंसी बन जाएगी। अब यही बात, यही खून चमड़ी में भी तो जा रहा है, चमड़ी में भी जा रहा है, तो वो कड़ी आज जितने बोलते ना स्किन टैग हो गए, मौके हो गए जी, बड़े बड़े मौके होने शुरू हो गए, या कहीं ना कहीं ट्यूमर गिल्टियां बननी शुरू हो गई हैं शरीर में, मेरे यहां पर भी गिल्टी, मेरे पेट में भी गिल्टी, या बाहों में भी गिल्टी, ये जितनी भी गिल्टियां होनी शुरू हो जाती है ना, उसका मतलब ये है कि आपका दूध फूट गया है, सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया, अंदर का जो साइटोप्लाज्म था उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से यही अब जगह जगह सेल में, एक दूसरे से सेल में जा रहा है, सेल टू सेल बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में जाते अलग अलग जगहों में जम रहा है, वहां पर ये स्टोन फॉर्म करेगा। सो ये बातें आम तौर पर मान लिया जाए पथरी का आता है कोई भी केस किसी के डॉक्टर के पास, तो असल वो ये होता क्या, अच्छा भाई गाल ब्लैडर निकलवा दो, अरे भाई गाल ब्लैडर निकलवाना हालत तो नहीं है ना, असल हालत तो ये है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बात चली कहां से है। गाल ब्लैडर निकाल दोगे तो आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली कहे कि कबूतर नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, वो दूसरे किसी अंगों में जाएगा और कहीं जगह जगह जगह ये संगना ये जमना शुरू हो जाएगा। तो पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मानते ही नहीं है, नहीं नहीं ये जो तुम्हारी बवासीर है ना, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, गाल ब्लैडर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाई अंग तो वही हैं, वही सेल हैं, वही सेलों का अंदर का निजाम मेम्ब्रेन खत्म होने की वजह से, खराब होने की वजह से अंदर का निजाम तो हर एक जगह का बदला है, ऐसे तो नहीं है कि एक जगह का बदल गया दूसरी जगह का नहीं बदला है, हर एक जगह का होता है। हाँ ये होता है कि एक जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, दूसरी जगह में मैंने एक एग्जाम्पल दी यहां का, अगर कहीं रिश्तेदारी में कोई डेथ हो जाती है ना,
जितनी जितनी हमारी नजदीकी होती है उसमें उतना उतना हमें दुख होता है, उतनी उतनी पीड़ होती है। जितना जितना दूर का अंग होता है उतना उतना थोड़ा दुख कम होता है, दुख तो होता है उतना कम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम आ गई किस तरह की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी में इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा, लेकिन वो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा इफेक्ट हमें उस अंग में ही दिखाई देता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हो तेरे तो गाल ब्लैडर में नुकसान है, गाल ब्लैडर निकाल दो। जहां पर दुख है उसी को निकालने की कोशिश की जाती है, ये जो सही ट्रेंड नहीं है। क्योंकि हम लोग ने एक डेफिनेशन दी थी कि असल में जो कुदरत ने शरीर बनाया है उससे सियाने उससे समझदार तो हम नहीं है ना, और एक चीज जो उसने लगाई है ना वो किसी ना किसी जरूरत के हिसाब से लगाई है। और हम कहें कि नहीं भाई ये चीज तो इसकी तो जरूरत नहीं। अब मैं अब देखा कि वो ट्रेंड चलता है कि किसी को अपेंडिक्स जो होता है ना, कई बार बच्चे पैदा होते ही उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि ना भाई आगे चलकर इसको कहीं अपेंडिसाइटिस ना हो जाए, इसकी प्रॉब्लम ना हो जाए। कई बार लोग पहले मर जाते थे अपेंडिक्स की वजह से, अंदर फूट जाता था, तो बोलते इसको निकाल ही दो। लेकिन अभी हमें पता चला क्योंकि डे टू डे जो रिसर्च होती है पता चलता है कि जितने भी अंग कुदरत ने शरीर में लगाए हैं ना उनका कोई ना कोई फंक्शन है। उसको निकाल देने का मतलब ये हम इग्नोरेंट हैं, हम नहीं जानते उसके फंक्शन के बारे में। और हम जानते हैं और फिर भी निकालते हैं तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसका कोई पर्पज है जो उसने लगाया है वो काम कौन करेगा? अगर नहीं करेगा तो वो आगे ट्रांसमिट होगा। एक आदमी क्लर्क यहां काम करता था, उसका कोई काम था, अब आपने उसको हटा दिया, अब वो फाइलें कौन देखेगा? और किसी और डिपार्टमेंट जाएंगी उसको खराबी करेंगे, उसका तो अपना काम है। तो इसी तरह गाल ब्लैडर को निकाल देना हल नहीं है, या किडनी वाली बात कहां भी हो गई उसको वहां से हटा देना अंग को, ये उसका हल नहीं है। हल ये है सोचना है कि अगर मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से अगर साइटोप्लाज्म में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो उसको ठीक करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये इंटरनल इंडोटॉक्सिन से हुआ है या एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन से हुआ है। तो उसके मुताबिक डॉक्टरों को परहेज बताना होगा, उसके मुताबिक डॉक्टरों को इलाज करना होगा ताकि वो चीज परमानेंट हो जाए, परमानेंट ठीक हो जाए, किसी अंग को काट कर बाहर फेंकना ना पड़े। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में सब चीजें ऐसा कर रहे हैं और सभी अंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आपको कोई पर्पज नहीं है। अब इसको निकाल दी, अब जब हम इसको ऐसे करते हैं जानते हैं भी ये हो गया है, इसकी वजह से और क्या निशानियां आएंगी? पीडीए की बात मैंने बता दी, सांस ब्रेथलेसनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी और दिल ज्यादा धड़कना शुरू करेगा। क्यों ब्रेथलेस में ऐसा होना शुरू हो जाता है? मतलब अब ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही। अब दिल का क्या काम है? दिल का काम है सेलों को खुराक को अलग अलग जगह पहुंचाना। अब सेलों के लिए वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसके पास रेड ब्लड सेल हैं, वो तो डब्बे हैं, खाली खाली डब्बे हैं ट्रेन के, उसमें माल भर के जाता है, ऑक्सीजन भर के जाती है। अब और सेल ही टूट गए हैं, सेल ही कम है, ट्रेन के डब्बे ही कम है जिसमें ऑक्सीजन जा सकती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब दिल का क्या काम है कि ना भाई तेरा काम है सप्लाई करना। अब मिस्त्री दीवार के काम कर रहा है और जो वो सीमेंट पहुंचाने वाला बंदा या ईंट पहुंचाने वाला बंदा, वो सीमेंट ईटी नहीं पहुंचाएगा तो मिस्त्री सारा क्या करेगा? नहीं तो उसको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाने पड़ेंगे कि फटाफट चलो भाई मिस्त्री खाली नहीं रहना चाहिए। तो वही काम ऑक्सीजन पूरा करने के लिए दिल को बार बार धड़कना पड़ता है, बार बार 72 से 80 बार हम लोग नॉर्मल समझते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही किसी भी हालात में, अब ये हालात तो मैंने आपको मेम्ब्रेन का बता दिया ना, अगर किसी भी हालात में ये अगर पूरा नहीं हो रहा तो उस हालात में दिल को बार बार धड़कना पड़ेगा, बार बार इसको सर्कल में लाना पड़ेगा। और इसी हिसाब से जो फेफड़ों का काम है कि नहीं बाहर से ऑक्सीजन और ज्यादा ले लो बाहर से, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और उसमें से ऑक्सीजन हम उसको फिल्टर करके सेलों में देनी है। लेकिन अब पूरी नहीं हो रही तो फिर हम सांस भी तेज तेज बार बार लेंगे और ये कंडीशन जो है सामने हमें दिखाई देगी जो ये साबित करेगी, पेशेंट आया सामने देखें और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं इसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है।
और अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है तो उसमें मसल की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हरेक सिस्टम ही वीक हो जाए, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हजम नहीं हो रहा। और एक और बात, अगर जिन लोगों को ये चीज लगातार लंबे समय तक रहती है, अब बुजुर्गों को देखते हो ना कि एड़ी फट गई है, उसकी बियाइयां फटनी शुरू होगी जिसको बोलते हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं, पोटे हैं, वो क्रैक होने शुरू हो गए। ये क्यों होता है? ऐसे होता है कि उनके शरीरों में जो चीज जा रही है वो पूरी तरह वहां एडजस्ट नहीं हो रही और वो खुराक सर्कुलेशन में भी पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जैसे नहर की टेल होती है ना, जहां पर बहुत ब्रीक हो जाती, छोटी हो जाती नहर, वहां पर पानी नहीं जाता। अगर पीछे से प्रेशर कम हो या बाघरा से पानी कम छोड़ा जाए तो वो नहीं जाएगी। इसी तरह ही बुजुर्गों में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी एड़ियां फटनी शुरू हो जाती, रियाइयां फटनी शुरू हो जाती, उंगलियों के टिप्स जो फटने शुरू हो जाते। पर ये बात हम बुजुर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन किसी यंग एज में होनी शुरू हो जाए तो फिर हमें इमीडिएट इंडिकेट करती है कि नहीं, इसके शरीर में कोई ना कोई इस तरह का जहरीला मादा जरूर चले गया है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे याद है एक एग्जाम्पल मेरे फादर साहब दिया करते थे हकीम अजमल खां के बारे में। वो बोलते हैं कि हकीम अजमल खां को उस वक्त तो वैद होते थे, इस तरह के क्लिनिक बनाकर हमारी तरफ तो नहीं बैठते कि दो तीन कमरे हम रिजर्व करके बैठे हैं कि मेडिसिन अलग है, कंसल्टेशन अलग है, फाइलें अलग है, इस तरह का तो काम नहीं होता था उस वक्त। तो उस वक्त वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं, वैद जी बंदे लगे हुए हैं, कूट पाट के वो सबको दे रहे हैं। तो इस तरह की बात थी। कुछ अंग्रेजों ने सोचा कि हमने सुना है अजमल खां हकीम का, बहुत नाम सुना है, देखते हैं, चेक करते हैं उसको। और वो उसके पास चेक करने के चले गए, उसने बोला कि भैया हम लोग आए हैं और देखिए तो नब्ज देखकर हमारी बताइए क्या बीमारी है। और उसने देखा और उसने बोला अच्छा इनको भाई फलानी फलानी दवाई दे दो। उसने बोला यार नाम तो बहुत सुना था, इसने तो एक मिनट में हमें कहा थी कि वो दवाई दे दो, इसका क्या हुआ, कैसे इसको कैसे पता चल गया बीमारी क्या है कैसे है? वो गए और थोड़ी दूर जाकर बोलते हैं यार ये ऐसे ही नाम सुना था, नाम ही चलता है इसका, और कोई काम तो है नहीं इसका। और उसके किसी शागिर्द ने, अजमल खां के शागिर्द ने सुन लिया तो उसने वैद्य जी को बताया, अजमल खां ने कहा उनको बुलाकर लाओ। बुलाया, वो बोलता है तुम्हारे शरीर में आज से 10 साल पहले का कोई जहर है और उस जहर की वजह से तुम्हारा ये मेम्ब्रेन खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैंने ये दवाई आपको दी है। बोला भाई कुछ हुआ था? तो उसने बताया मुझे सांप लड़ा था, सांप ने काटा था। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो ये निशानियां आम तौर पे आनी शुरू हो जाती, डिजीनेस होगी, बंदा इरिटेट हो जाता है। जब सांस फूलता है ना कि नहीं काम चला जाता है तो काम करना पड़े तो आदमी इरिटेट हो जाता है। ये साधारण सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस होगी, इरिटेशन होगी, मांसपेशियां सूखनी शुरू होगी, बियाइयां फटनी शुरू हो गई अगर लंबे समय तक है। और जवान बंदा बूढ़ा है तो हम समझते हैं कि कंडीशन है, एज ओल्ड एज की सर्कुलेशन स्लो हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर यंग एज में ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे की कहानी सेल मेम्ब्रेन की है। अब भाई बूढ़ा हो गया और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उसमें क्या होगा? उसमें दो बीमारियों का नाम हम लेते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्जाइमर, दूसरे को हम बोलते हैं पार्किंसन। अल्जाइमर को हम ये बोलते हैं कि ब्रेन को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन पूरी तरह काम नहीं कर रहा और याददाश्त कमजोर हो गई। अल्जाइमर के पेशेंट मैंने इस तरह के देखे हैं कि उस पेशेंट को उसके अटेंडेंट, उसकी लड़का या लड़की कोई लेकर आया है साथ में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो साथ में मुझे लेकर आया है मेरा बेटा है, बेटी है या कौन है, उनको ये भी याद नहीं, उनको नाम भी याद नहीं रहता। अल्जाइमर की कंडीशन इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। एक बार मैं ये जो टीवी स्टेशन है जिसके प्रोग्राम मेरे चलते थे जस्ट पंजाबी में, मैं उनका ये अल्जाइमर पर लेक्चर दे रहा था और बुजुर्गों के हालात की मैं बात कर रहा था और वो जो आदमी वो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था ना, वो मशीन के पीछे बैठा हुआ रो रहा था कि हम लोगों को भी बुजुर्ग होना है, अगर ये हालात हमारे साथ बने जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत मुश्किल वाली बात है ना। और वो रो रहा था। अल्जाइमर किस तरह की कंडीशन है कि हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट जो हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, अब हम उसको पहचानते नहीं है। मतलब
जो हमारा फ्रंट लोब है ना ब्रेन का, ये अलग अलग ब्रेन एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, मैंने इसके कई बार बातें आपसे की, और इस ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। हमारा फ्रंट लोब जो है ना ये याददाश्त से कनेक्टेड है, हमारी कैलकुलेशन से कनेक्टेड है, हम मैथ में होशियार होते हैं कि कमजोर होते हैं, ये हमारे फ्रंट लोब पे है, हमें याद रखना है। बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें भी हमें याद रह जाती है, जिसका मतलब हमारा फ्रंट लोब काम कर रहा है। अगर ये भी याद ना रहे कि ये सामने कौन बैठा है, तो फिर समझो कि फ्रंट लोब जो है डैमेज हो गया है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हालांकि ये बात है कि कुदरत ने ब्रेन को ठीक रखने के लिए, जैसे किसी देश से लड़ाई हो जाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है देश का या फौजों का कमांडर होता है, उसको बचाकर रखते कि इसकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम हार गए, जंग को हार गए, ये एक टेंडेंसी होती है। और उसी लिहाज से कुदरत ने ये कहा कि ब्रेन पूरे शरीर को चला रहा है, इसको दो गुना खून दीजिए, इसको दो गुना खुराक जाए, दो गुना ही इसको ऑक्सीजन जाए, ज्यादा तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हम आदमी है एकदम ही, दम आया तो हम आदमी नहीं तो डेड बॉडी है, और दम का मतलब है ऑक्सीजन। सो ब्रेन को जो आप देखते हैं ना गले में ये दो नाड़ियां ऊपर जाती, हाथ लगाकर देखो तो दोनों साइड में टक टक हो रही है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, खून की नाली बाई तरफ से दिल से निकलती है, उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा फिर यहाँ पर आके एक गोलाई में पेट को नीचे जानी शुरू हो जाती है सभी अंगों को सप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही इसकी गोलाई है उसमें से दो नालियां सीधी सिर को जाती है, प्रेशर हुआ सीधी दो नालियां सिर को जाती है, ताकि दो गुना खून सिर को पहले पहुंच जाए, उसको ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा खुराक मिले। बावजूद इसके भी अगर नहीं जा रही, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो फिर ये याददाश्त जानी शुरू हो जाती है, और बुजुर्गों में आमतौर पे होता है, पर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की डैमेज की। अगर उम्र से पहले ऐसा हो जाए तो लोग आमतौर पे 50 55 60 में बोलना शुरू कर देते हैं, और मुझे भूल गया यार, या भूलने की आदत हो गई है, बहुत सी चीजें मैं भूल जाता हूँ, साधारण सी बात है, यहाँ आम ही लोग बात करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, खुराक की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, ये इस चीज का साइन है। हाँ, इसकी दो कंडीशन है, एक को हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, कि घरवाली ने कहा कि बाजार से आते समय ये चीज लेते आना, अब मेरे पास तो बहुत से काम है, मैं अपने ऑफिस का काम करूं, ये करूं वो करूं, करते करते ये भूल गया वो जो घरवाली ने कहा था सामान लाने के लिए, मैं नहीं जा सका। तो इसका मतलब है एब्सेंट माइंडेडनेस, ये वो बात नहीं है एब्सेंट माइंडेडनेस के, मेरा जो कोटा है इंटेलिजेंसी का उसको रखने का, ठीक है क्या क्या मैंने करना है वो छोड़ा है, छोटा है, नहीं याद रहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, उस चीज का नाम है अल्जाइमर। और दूसरी बात मैंने इसी हालात में सेल मेम्ब्रेन की डैमेज के बारे में ही कही थी कि अगर इस तरह का होना शुरू हो जाता है और उम्र बुजुर्ग हो तो उसको हम बोलते हैं पार्किंसन। और पार्किंसन को दूसरे लफ्जों में हमें बयान करना हो तो हम कहेंगे इनकोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। माइंड का अगर बड़े अफसर ने हुक्म दे दिया, और आपने देखा होगा कि नीचे वाले अफसर काम ही नहीं करते, उस तरह बेपरवाही करते हैं, नहीं परवाह करते उसकी, तो किया है हुक्म तो कोई बात नहीं। अब हाई कोर्ट की बहुत सी बातें होती हैं, वो सरकार को बोल देते हैं, सरकार काम ही नहीं करती, नहीं करती, तो मतलब इस तरह का भी काम हो जाता है। और इस चीज को हम बोलते हैं पार्किंसन। अगर शरीर में इस तरह का हालात बन जाए कि ब्रेन चाहता है मैं कुछ करूं, हाथ को ऑर्डर देता है कि ये पकड़ो, हाथ पकड़ ही नहीं रहा। कुछ लोगों के हाथ आपने कांपते हुए देखे होंगे, यंग एज में भी लोगों के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोरिया। उसका कंडीशन भी नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और हम ये बोलते हैं कि ओल्ड एज के हालात में अगर ऐसा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को, अच्छा बापू चाचा ये लो चाय का कप ले लो, आपने उसके टेबल पर रख दिया कि चाय पी लो, लेकिन अब उसका दिमाग तो ये करता है कि भी मैं चाय के कप को पकड़ूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वो चाय के कप को जहां से पकड़ना वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटका लगता है और कप गिर जाता है। ये इसको हम बोलते हैं पार्किंसन। इनकोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और अपने शरीर का काम करने का। ब्रेन ने तो ऑर्डर किया है कि कप पकड़ो और पियो, लेकिन हाथ
उसको उसके मुताबिक नहीं कर रहा जैसे उसने कहा था। तो ये सब बातें जो है आमतौर पर ओल्ड एज में होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर यंग एज में हो जाए तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई ऐसा हो गया। अब इतनी सारी बातें मैंने आप सब लोगों को बोल दी कि भाई फिर हल क्या है इसका, क्या करें। बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम ये शनाख्त करें इंडोटॉक्सिन है कि एब्जोटॉक्सिन है। हमारी खुराक पहले डॉक्टर बोल रहे हैं परहेज करो जी। अच्छा डॉक्टर जी खाना क्या है मुझे, ये आम लोग पूछते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई एग्जोटॉक्सिन है खुराक की वजह से जा रहा है या किसी दवाई की वजह से जा रहा है, ये डॉक्टर का काम है आपको बताना कि कौन कौन सी चीज आपके शरीर को फिट नहीं बैठती, उसको जाने के लिए आपको क्या करना है। तो ये इसको बोलते हैं एग्जोटॉक्सिन। तो सबसे पहले आपको शनाख्त करनी है उसके खान पान रहन सहन। एक कल पेशेंट मेरे पास आया और वो उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने कहा भी काम कब करते, कहता है काम तो मैं रात को करता हूँ। अरे भाई रात के समय में कुदरत भी अपना चलन बदल देती है। रात के मिडनाइट, लोग बोलते हैं ना कि रात को मिडनाइट दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण क्या है कि सारा दिन वनस्पति हमें ऑक्सीजन देती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वनस्पति का जीवन कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मिडनाइट जैसे घर की सवानियां होती है ना, सारा काम किया करने के बाद कब भांडे बर्तन जितने भी है उनको गर्म पानी से धोकर रख देती है कि सुबह इनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जा, हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, नींद पूरी तरह आ गई, हाथ ढीले हो गए, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं, नींद में होते हैं, उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में एंटर करती है। जैसे कि ऑक्सीजन भारी है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जाती है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है वो ऊपर निकलती है। लेकिन उसके पैर क्या होता है कि आप रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, और दूसरी बात उस वक्त एनवायरमेंट में भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और जा भी जाती है तो आपका जो फेफड़े है पूरी तरह फैल जाते हैं, पूरी कैपेसिटी में फैल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो उसमें पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। कोई भी आदमी अगर 10 से लेकर 2 बजे तक पूरी नींद ले ले, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, पूरी नींद मिडनाइट की 10 से लेकर 2 ले जाए, उसको 8 घंटे या 10 घंटे बेड पर लेटने की जरूरत नहीं है। उसकी ऑक्सीजन जितनी उसको चाहिए वो कैपेसिटी फिलअप हो जाएगी, और उसमें जो रेजिडुअल पोर्शन है वो टाइडल एयर, टाइडल वॉल्यूम, ये सब रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब हम गिनती करते रहते हैं लंग्स की, मतलब उनका कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी कि रेगुलर ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा लोड उसका बच जाएगा ऑक्सीजन का, वो फ्रेश फील करेगा। और अगर आप इस समय में जाग रहे हो ना